हाँ जी बिल्कुल मेरे वालों प्रोग्राम के बदलू यो ट्रैक साइड तब हम सुख ना नो ट्रैक न जिको पास बिहार अजू नो प्रोग्राम के बेतासो मैसेजेस तासो कॉल्स तासो कमेंट्स जिकुम दी आ शरीक को हाँ जी बिल्कुल मेरे वालों प्रोग्राम सहर जेरे के वो मुस्तो से मलगर त्या जिको बदो करना दावा भी और ठीक दे आना बजे पूरे बिल्कुल आना बजे पर मुस्तो से गपशप भी मल करते अभी गपशप को लागे और मीना वाल जी को बिल्कुल तैयार दी क्या ना बिल्कुल काल जरा रवान दी हो लग बता सो इंतजार करवाई क्या ना

हाँ बिल्कुल मिलने वाला प्रोग्राम सरजे रे रवान ही के ना वो यो ट्रैक चिकुम ना यो ट्रैक साइड पे चिकुम ना सुख है ना नो आगा ट्रैक पर पास तो परा हाँ बिल्कुल आगा ना पास को बिया रजू प्रोग्राम के तासु काल तासु मैसेजेस तासु कमेंट्स चिकुम ये आवश्यक है।

हाँ जी बिल्कुल, मिलने वालों दा जनेसार। ओ जनेसार वजीर आवास के दो बिल्कुल दा स्पेशल डेडिकेट हुई वजह मलक था पकन तो खेल के कना ऐसा ऐसा नूर मलगरी जी कुंडिया गुता हम कना लड़ रहे और वही कना वक्त काम दा अब बिल्कुल ब्याबर दूर में दीदी ट्रैक ना पास तो से काल शिकुम दिया अब हम शरीक हुई तो से मैसेज शिकुम दिया अब

कॉस्मेटिक्स ऑफ पाकिस्तान, सिफात कॉस्मेटिक्स ऑफ पाकिस्तान जी कमान कपिल जी या कम प्रोडक्ट ही बड़ी के अल्हम्दुलिल्लाह रखेरा माशाल्लाह यूजरी भ्या माशाल्लाह वंस अगेन यूजरी भ्या वाई बशेर कमान निशाबाशी जमा सल्ला डेरे मेरे वाले डेरे जाते शुक्रिया नजीर दो टास्क रेडियो दो नजमान खटक से जी और सर सर दखेरा एमएसडी इंजीनियर से डेरे जाते मन ने को डेरे जाते शुक्रिया ला को दखेरा मंगा दो डबरी दो इब्राहिम बैठे एंड सोलर सिस्टम वाला इंतिहार डेरे जाते मशकूर और इंतिहार डेरे जाते ममनून यू जी जमंग प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह दखेरा पगन शमीर प्रोग्राम की पॉल सिपर 316 622 22 और 46 दखे रखा नंबर सन सर याद उसा देखी सिपर 316 या 622 या 22 और 46 दखे रहा ये बदे नंबर मानी दखे रहा सबसे उठे फोन कॉल ये बदे नंबर मानी दखे रहा सासो बलाड़ी जातो मशीन दखे रहा प्रोग्राम था ररवान दी जी हां प्रोग्राम था सिद्धि जी प्रोग्राम था बला बला बला बला यलका गर्मी ने जी इंतहा दे रचा गर्मी ने पर गर्मी के वजह से कारू कुजी छे यलका पर गर्मी के वजह से कारू कु खैर यलका पर गर्मी के वजह खैर दा कारू कु हां एमएसडी यलका पर गर्मी के ने पर गर्मी के लगे कोशिश कोल बगार दी जीता सुम कोशिश कोई गना यलका यलका दा यलका ना बारान ने दे जी जे सांस के रावरी जी हां दा दे अदुन बारान दे जी यादू ना भेजने की कने भेजने देखेरा लगता था तो पता चल गया निश्चित बाहर क्या देखेरा जबे हम जब दे प्रोग्राम की उपकरण वाला मुकाबला उगु देखेरा जमंगा भाई प्रोग्राम की देखेरे उपकरण वाला मुकाबला उपकरण वाला मुकाबला तक देखी चीज जमंगा अवला नहीं बदखेरा मंगे जान सरा मंगे बद जान सरा देखेरा इंशाल्लाह कोशिश बकाउ देखेरा ये लगा भरपूर कोशिश बकाउ देखेरा की अवला नहीं लस काल जान सर प्रोग्राम की शामिल को देखेरा दस काल रान जान सर प्रोग्राम की शामिल को देखेरा और बिया उपकरण वाला मुकाबला बाकी क्यों को देखेरा उपकरण वाला मुकाबले दा बारे खेरा सोख सुकुरड़ी जी अवल मैसेज जो को देखेरा बिया टेलीफोन काल देखेरा प्रोग्राम क्यों कही सिपर 316 82 22 46 देखेरा इंतहाई نورا مقابلہ دبدا مقابلہ کی چکم اخیرے کا اثبات شو اگر بد صفات کا سمیٹ ایک صاحب پاکستان یو بہتر ہے توفہ ملاوی دیکھ رہا چتے کم علاقے سر تعلق ساتھ چتے کم جے سر تعلق ساتھ دیکھ رہا التے چتے منگے کم جزدی کری دکاندار تھے اغلب اور شی دیکھ رہا دو صفات کا سمیٹ ایک صاحب پاکستان یو بہتر ہے توفہ بخیر انشاءاللہ تاسو لدر کی دیکھ رہا اور ازی دیکھ رہا دیر خوندہ والا مقابلہ دیکھ رہا

देने लगा वहाँ पर मिठाई के बाली कॉस्मेटिक्स मिली जी चिरी बजार के मलिक जी कॉस्मेटिक्स मिली जी हमारी मार्केट के देने लगा मुनीर कॉस्मेटिक्स मिली जी मेन बाजार दरिशेलो के सही था दरिशेलो वालो छोड़ता है और देने लगा पर के बताओ तो मिली जी छाइन प्लाजा के सलाम कॉस्मेटिक्स राम और वर्सरा वर्सरा मेन खोरक सिटी के बताओ तो मिले विजी आर जे खान खटक लेस एंड कॉस्मेटिक सेंटर रोम फ्यूचर तक मौजूद दे यानी यूफोन फ्रेंचाइज था बिल्कुल महामहा सरहद मार्केट मॉडर्न कश्मीरी विक्रय सरा पखो के जमा दुकान मौजूद दे डिजाइनर कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट सरा सरा ताहो बपा होलसेल रेट बांधे मिले विजी वर्सरा वर्सरा कॉस्मेटिक्स वेरायटी बनू रोम था मिले विजी जोखो रेट सरा जो मुनासिब रेट सरा वाली चीज जिनायर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट चिकुम दे नुदा पता उस मिलोवी जी मास्टर पर होलसेल रेट बांधे ठीक था।

ये थोड़ा सा मुश्किल है, सही है, कॉम्प्लिकेटेड है। सब अंबाई जो सांग द टोल टोल कुर वाला खामोश का आगा चित ऐसा स्टार्ट के इमो सिस्टर वाई चे संगा मख के सब बने पुशो ने मखा माशाल्लाह भाई परून में रियल की वाली दी जो तो दे खान था दे रगले वो खो सुशा में नदी स्पेशल

अच्छा हाँ, अच्छा मैं शुक्र दे ची सलाम गुड मॉर्निंग ओके जी वालेकुम सलाम थैंक यू सो वेरी मच हम वही ची सलाम रेहान ब्रो माय फर्स्ट एसएमएस आई एम रुबाब अलोन फ्रॉम कुरका हाउ आर यू हाउ इज गोइंग आई लाइक टू द शो सलाम टू हर एंड कौसर आपी प्लीज प्ले मी पश्तो सॉन्ग बरहद मजनून हदा का बरहद लैला हदा अच्छा है बर खदा का मजनून खदा आ गए सांग दिखा उस टाइम खत्म दिखे ना सबा था पब्लिक ओम खा।

0: किसी हर सौ की मन अच्छे गपाले बी तस बहुम मिस कॉल बहुत ग्राम के मिस तरीके कार दिन चाहत वश सिफर सिफर सिफर तीन सौ तेरह सिफर तीन सौ तेरह सत सौ पचासी अठारह चौरासी सिफर तीन सौ तेरह सत सौ पचासी अठारह चौरासी मान कवल बिल्कुल जी मत प्रोग्राम से साल कवल मिस कवल सिफर तीन सौ तेरह सत सौ पचासी अठारह चौरासी चिकम निमिश कॉल नंबर दे एस एम एस नंबर दे दो नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जमा गुल गुलावरी दुन को ये लगा फैजाना चरंगा से जुड़िए हम भी रिखला और दिन रोज सी मीठा खेल और सी याद दिन रोज सीरी वाला चरक सीटी वाला चरते सी विषय के नाम बोली है सी कंद हदील कंद बजहील तपियो कंद वाला दबली लवागर शिगिल वागर सरकिल वागर कमंगर वाला जी वाले की मबथील वाला कंद खेल वाला सरकिल वागर वाला सी तख्ती नसरती वाला चरते रचिक से सड़या नो रचिक्षे जी मासर खबर है तेरे हो गए जी रविक्षे रागले दे जी सासुरोर सासु बैजान नाजमान तेरा दे जी चलिक्षली चलिक्षली प्रोग्राम नु सी चलिक्षली प्रोडक्ट्स सी जग जी मासर सासु द स्किन फिकर दे जी मासर द खुले फेंदो मासर द खुले मेंदो मासर द खुले अफिगानो ममिगानो चचिगानो रोरियानो गोडागानो द टोलो द स्किन फिकर दे जी नो रचिक्षे मन से गप सब हले की सी टिकट काले बहन की जी सदकार खबर बहन की जी आओ द दीने लवाज जी द स्किन खबर बहन की जी तनो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान खबर बहन की जी बिल्कुल जी तुसी बच्चे तहन से चित बोसी सी मास्टर बोसी सी रेडियो मनी 8.4 करेक्टर बोसी बिल्कुल जी द आवाज द गग चिकम दी तुसी खुशन त देरे सी जी द आवाज द रेडियो मन 8.4 करेक बिल्कुल जी द करेक आवाज चिकम कम से तरह सी द अमन आवाज जमीन आवाज द खुशले आवाज सुकले आवाज द नजमान आवाज चिकम कम से तरह सी जी बिल्कुल वीक्षे बैदार शे शिक्षे मनन अलग दा उस खुबुन टाइम द चले के तुसी प्रायते यहां सी अटैक से बा उस्मान से बा मना दा शिक्षे कने जे मा अलग दा उस से शिक्षे के वे हां बादशाह दिन से बा विषय कने जी हां कह बोला सला है जी मना विषय शिक्षे जी जरो गले मना दास उस पसी चिकम ने के मजलस पे पसी ने मैं मना मजलस सुनो कुछ गप शप लगो जब फैन दे आईना सिंगे खोरी शाही जुड़े विशेष मणि नो आओ के ना जा सुरूर अगले दी ची और बे चिकम ने के तुस खुमने के नो दा मा सर गुरड़ी जात गट जाते के बे ता सुशादु के ना सी मना रचिक शे हां वो तो बिल्कुल मिस जो कुछ कॉल्स हो के जी सिफर तीन सौ तेरह सत सौ पचास अठारह चौरासी बांधी सी मैसेज हर तो कुछ भाई जाना आवाज है उर्जी नो टेंशन नो टेंशन यानी मुझे उस टेंशन ने कोजे के ची मुझ भाई रोगला है देसी मुझ भाई रो सीधा ले देसी बिल्कुल जी कुछ भाई हाजिर रहा हाँ, हाजिर देसी बिल्कुल जी मास्टर अनेक बने गजी थ्रू कॉल से थ्रू इसी मास्टर बिल्कुल जी कालेसी मिस बहा के वैसी खबर तेरे बनोर हद से रकम से सदी प्रोडक्ट्स होवली से रास्ते दे दीने लवासी चिकम देखने प्रोग्राम होवली से रास्ते से कॉल हर राउंड दी जी मत दिन खाली क्यों मन आसमान में नंबर दुम रत्ती से शावे के ना ले आराम आराम से नंबर शवा अच्छा मुझे नोट को कहना सी यूजर दर आराम आराम से नंबर शवा कहना सी अवल बतु से अपन मोबाइल मुबारक रोख ले सी कसु के कपे से निकल गुड़ी जी हाँ कसु की मोबाइल के नोट कवल गुड़ी हाँ जी कसु की बस दिन से बहुत सी अपन डगर में निली के ना सी चुली लिखल पाकिस्तान प्रोग्राम के शिरकत प्रोग्राम के मुश्तर अमरस्ता बताऊन हासिल भी जी रिचा द नोटेंशन कॉस्मेटिक्स ऑफ पाकिस्तान बच्चे के लिए तुझे नोटेंशन इस्तेमाल हो ऐसा सुबह ही रबी थी बताओ सर बहाल इशान सी मात मीना रा के सी मीना वाण मसी फुल खोइन दुना फुल मैन देना फुल रुरियानु ना दकर एक सुमरा वरिदुन की दी दबनु गुल सुमरा वरिदुन की दी बठुलो न मीना वाण सी दी सी जो से न वाण पैसे में से न वाण मीना वाण मसी मीना बताओ सर आखिर ला सी निकले था सुमला मीना रा के न बताओ सर है मसी कहता सो वाड़ सी जी मुझ भाई चिकम दिखे ना दी मुझ तरह भी चीज मुझे भाई चिकम दिखे ना मुझे प्रोग्राम ने क्यों बताओ لازمی انتخاب کوي چې د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان کې عمر به تبلی دي چې د بنو د لکی د کرک د موږ خپل علاقې دي چې مدینه بالکل ته په فکر اوسه چې کله هم زموږ خویندو ته خپل ورونو ته آواز وکړو چې بای جان مو روغلی دي چې خویندو ورونو تاسو ورور راغلی دي چې ته یې چې ته نه رچک شه مې ان شاء الله چې زموږ خویندو به نوټینشن پروډکټ استعمالې زموږ ورونو به استعمالې چې زموږ خوفین دي زموږ مین دي دا ډېر زیات پښتنې خویندې دي ډېر پښتنې زموږ مین دي ډېر پښتنې زموږ ورونه دي نو هغه خپل ورور چې کوم ده کنه چې لږ چټولو ته نه ورکی نو لازمی به انتخاب کوي چې د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان خاصه وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ قربان سو خبر کوي کم زینا حبیب اللہ بھائی سڑماشی جرمانہ جمع کی جانانشی او کنه دا تاسو مینه ده کنه ګورته انتظار کوي په دې ګرمه کې تو انتظار وکړي چې ګورې نزمان به روسی سوډیر زو ته مننه خوشاله شي کدرمن شي نن ور سره سره شامل دي پروګرام کې سټه پادر وړې دو سه شیر دی راوړ کنه
1: واسه کومه یو تر وړه ده کې
0: زړه مننه خوشاله شي کدرمن شي
1: خوشحال
0: پروگرام

ओके जी मिसिंग अगले जी सलाम मेरे प्यारे भाई सनंगी शहीद जोड़ी बरबारे जी विश भाई मैं हाजिर हो गई आपके दिन कैसे गुजरा कर रख ठूलू जी ने खुद सलाम वालेकुम सलाम आए मनाल मनाल रे जत मनना जमा खोर खुशाना शी बल गुल गुल उमर रेना शी बरकी से ब्रोगले देसी और गजल हर लजल दी छ मुंगते दो खुद बारान पर लंबो सा गस्ता जबर हैरान हो छ दजवन लेवनो सा गस्ता दलत बला السلام علیکم.

0: लम्हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो, रेडियो अमन

दम है खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

मुझे भी सोचो, मुझे था ना लक्ष्य छंद चिन्ह ये टेक्स्ट मैसेज का सही हो, टेक्स्ट मैसेज खाल मखा आहा सब 300 300।

नशे बिल्कुल दगा सोंग मर सरोवर हो दला और दाल सुखी है ना बिजी है मावलस के साथ है लोस के साथ है लोस के साथ है लोस के साथ है ना और थिंक दा ख्वान दे रोक ली क्या ना असरंगे दा ख्वाश दो और काम से इसके लिए रोने से मोने ता हाँ मकावर कई वजीरों ने स्टाइस दो सौ इकानवे दो सौ बियानवे और वैसे देरी के ले बदरता न ग्रम चकना रे बदरता न ग्रम दजड़ की से बदरता न ग्रम नोरे के रे बदरता न ग्रम जमा पशान दजड़ के उखड़ दर्दो ना वाह गिले मन चिस्तर की क्या ना ज्यादा बने नुशेर सर।

फेसबुक के जरिए ऑफिशियल प्रोग्राम उड़ी ढेर जो तमन्ना यो जहान मना ओ जन से भी ओ जबरदस्त यो जहान मना ओ सन मगवान यो मैनेजर साहब तो मैं स्पेशल सलाम आए वालेकुम सलाम ढेर जो तमन्ना सलाम ना दे नेख बनेगा और से दल और मसलूम अजीब सलाम ना लो जो चीज तो बेना प्रोग्राम उड़ी ढेर जो तमन्ना

ओके इट्स मी सरफ फ्रॉम कर्क शहर दिस टाइम एंड वर्ड और कुछ चीजें कभी वापस नहीं आज आती, जैसे के कहे बोल गए अल्फाज अच्छा जैसे के बोल गए अल्फाज गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा जबरदस्त यो जहान।

तुम्हारी आदत बन गई है, किस दिन हम सो गए तो तुम्हें नींद से भी नफरत हो जाएगी। वहाँ जबरदस्त फ्लैगों ने यानी डायमंड वर्ड मनाना मनाना मनाना।